संग उजियारा जहां पंत तेरा को न सिजानू हर का नाम ते नाल पछानू जय महाभयान तपत बोधा तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां

सात गुर के चरण तोय तोय पीवा, सात गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चरण कमल गुर के जपत हर जप को नीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप को नीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाओ लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक प्रेसुरिया।

0: तब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी आरंभता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लह के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द तद घर सभा गए, घर सभा गए शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो, गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे, आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समय दा ए निचोड़ होवेगा शब्द। सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होगा।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दे अवगुण को न चितार दे गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल

पिता कृपाल आज्ञाए दीनी बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे।

हर मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए, जिस तरह अमली

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया ओ सारियां नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

हाँ तिन बलहारे जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता वो त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख नहीं एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज घर विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारे जाओ मैं उन्हां तों

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विच अश्रू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तूं आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी।

वारी बन जा, खनिए बन जा, तो साहिब के नामे ऐ परमेश्वर मैं तेरे तो वारी, तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले, नाल बेबे नानकी दे

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनु गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखिया बेबे जी गुरु नानक साहब आए ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बावा फड़ लिया कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ते नहीं हो सकता सत्संग ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा जिदे हिरदे विच प्यार नहीं जिदे दिल विच प्यार नहीं वो किसे नूं की प्यार देवेगा चंगा इंसान बनने वास्ते

बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नु स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। ओ पति भी ने, पुत्र भी ने, ओ भरा भी ने, ओ सज्जन मित्र भी ने, ओ गुरु भी ने, ओ पीर भी ने, उन्हां ने दुनिया नु प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नु प्यार देंगे, लोकां नु प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण, दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन

बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती। किसे मित्र नूं मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नूं मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नूं मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं वधे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हन, और प्रदक्षिणा लै के फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नूं अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नूं ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उन्हां दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोनों ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे ते प्रदक्षिणा लई, जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन,

परमेश्वर जिस दे चरना कमलां विच दास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उस तो जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है। मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साई है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानता है कि आने वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ए बेनती करता है कि है मेरे साहिब, मेरा आने वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हो, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ए गुरसिख, तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जानगे। मेहर करे जिस मेहरवान, ता कारज आवे रास। साहिबां दा फरमान।

फिर कहिंदा अज तां लुट्टे गए क्योंकि चार फालतू चले गए ते जे रुपये लैके जावे बाजार कोई जेब कट लवे या किते सुट के आ जावे डिग पैण किधरे ते पंजा फिरेगा पुलिस वाले कोल जाएगा उचिया बाहां कर करके बाजार सिर ते चुक लेगा कहेगा मैं लुट्टिया गया क्योंकि वो रुपये अजाई चले गए। ते कदे बंदे ने सोचिया है कि तेरे जीवन की बड़ी कीमती पूंजी एक विश्वास अजाई जा रही ए बदले कुछ भी तो नहीं मिल गया एक विश्वास के बदले एक बारी वाहेगुरु किया जा सके एक श्वास नाल राम का नाम लैके प्रभु का नाम उदी याद ते एडी कीमती पूंजी जीवन का आधार श्वास अजाई जा रहे पता ही कोई जिंदगी बीतती जा रही ते कदे ध्यान भी नहीं मारे अपने आप ते ए पिछले वरे की करता रहा अगों की करना चाहिए ध्यान ही कोई सुता है बंदा बहुत बंदे आ दिन चढ़ गया दिन का दूजा पैर शुरू होने वाला लेकिन अजे भी कई सुते पै हो गुरमुखा का दूजा पैर मुक रहा ध्यान देना गुरमुख का जो पहला पैर है रात का पिछला पैर रात का चौथा पैर चौथे पैर सभा के सुरतियां उपजे चाव सुरती वाले होश वाले समझ वाले चा पैदा होंगे तिना दरियावां सिओ दोस्ती मन मुख सच्चा नाम वो मन विच मुख विच सच्चे वाहिगुरु अकाल पुरख का नाम जपदे ध्यांदे अमृत वेला सफला कर लेंदे मन मुख की कर रहे सोए रहे हो मन माव सुता है इनू खरमस्ती भी किया जाता है पेट भरियो पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हारे साहब कहंदे ने जिहड़ी सोहणी सेज जिस ते तेनू बड़ी नींद पई आउंदी है ना तेनू नहीं पता है तेनू खा रही है तेरे जीवन नू ए सेज ए सोहणा बिस्तर या आराम दे बिस्तर तेरी जीवन दी बड़ी कीमती पूंजी अजाई गवारे इत्थे सुता सुता तू जिंदगी दे बड़े कीमती श्वास बेकार गवारे जिहड़ा जाग के गुरु द्वारे ते आ प्रभु द्वारे ते आ भाई साहब भाई गुरदास जी तो कहंदे ने वो कहंदे ने जिहड़ा बंदा गुरु दर तक पहुंचिया नहीं ना गुरु दर तो बेमुख रह गया कहंदे ने बहुत वड्डा हथियारा है ध्यान देना कातर है बहुत वड्डा एक हुंदा दूजे नूं कतल करना समाज कहंदा है कानूनन गुनाह है जुर्म है एक होर हुंदा है आत्मघात कर लेना वो जिहड़ा मारी जाए तो मुकदमा बेचारे की चलाउण पर जे किते पहला फड़ लैण जो कहंदे ने ए आत्मघात करदा होया फड़िया गया खुदकुशी करने की कोशिश पकड़िया गया फड़ के अंदर कर देंदे ने कहंदे ने जे आ किसे नूं मारना ते अपने आप नूं मारना लेकिन नहीं अपने आप नूं मारना ओ तो वड्डा गुनाह है ते महाराज कहंदे ने संसार दे विच जिहड़े आत्मघाती लोग ने ना आत्मघाती है जगत का साई संसार नूं कतल करन वाला कसाई जिहड़ा बंदा अपने आप दा घात कर रहे ते अपने आप दा घात ही तां हो रहा जिहड़ा बंदा अपने आप नूं खत्म कर रहा खान पीन मौज करन ते सुते रहन च अपने जीवन का नास मार रहे हैं साहब कहंदे ने इहदे नाल वड्डा होर आत्मघाती कौन होवे भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने इहदा माफ नहीं कीता जाना हत्या मूल न उतरे बेमुख गुरुद्वारे गुरु के दर तो बेमुख बंदा भगती वाले पासे मुंह ना करन वाला बंदा नाम वाले पासे ना लगन वाला बंदा अपने आप बारे ना सोचन वाला बंदा अपनिया बिरतिया उत्ते निगाह ना रखन वाला बंदा तो कतल हो रहा अपने आप नू कतल कर रहा आत्मघाती है इनू किवें हत्या माफ

की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहा है प्रभु जस मान रहा है और ये धर्म दा मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण कीता आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलदे ने त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलदे ने रहे लिव तार न कहावत है भटकना मुक जांदी है लिव जुड़ जांदी है जीवन दा आनंद लैंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दें ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेडे गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गुणूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

प्राणी पिता माता धर्त महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगिया बुरियाया माचे धर्म अधूरे करमिया।

सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी थी। उन्हां मूर्खां ने ये ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी हुईयां,

एक कसम लिख के भेजी के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो कि तेरे होर चले जाओ। मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी कि तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा।

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझिया, कागज लिया उत्ते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

गुरु नू ए बिदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अपने घरां नू तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियां दे नाल अपने घरां नू पहुंचे, घरवालियां ने पुछिया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नू कहन लगे, असी ते गुरु नू किले विच छड़ के आ गए, किले नू घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नू छड़ के आए हां, ते नाल ए भी लिख के दे आए हां, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। ए गल घरां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां, उन्हां ने कहा ठीक है, अज गुरु नू छड़ आए, अपनी जान नू प्यारी समझ के, एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे, पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तो सिख गुआ के जीवना, को जीवना है, एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी, साडे पति तन ने जेड़े सेवा करदे मरे, अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नू छड़ के आए हो, मौत तो बहुत डर लगदा, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो, इस साड़ियां चुनियां ले लो, पग्गां ला दियो, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दितियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दियो, कमर कस्से करके असी जावांगियां, असी लड़ाई विच हिस्सा लवांगियां, असी गुरु दी सेवा करांगी। जदों ए गल घरां वालियां ने कई फिटकारां पईयां, खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल कीती, दुनिया दे सुख बदले गुरु नू छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी कोई जीवना है, सिर झुका के जीवना कोई जीवना है, धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदियां मरना,

आनंदपुर साहब का किला गुरु साहबा ने छड़ दिता क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्ना कसमां तोड़ दितियां, जिन्ना आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्ना भी कसमां तोड़ दितियां। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां।

छोटे साहबजादे एक पासे, माता सुंदरी जी एक पासे, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादियां दे नाल एक पासे, सारा परिवार बेरू खेरू हो गया। कोई किसे पासे, कोई किसे पासे चला गया। हौली हौली भाई मान सिंह ते इन्हां दे साथी गुरु साहब दा पता लगा रहे ने। ये खबर घर घर फैल गई कि वड्डे साहबजादे चमकौर दी गढ़ी शहीद हो गए, छोटे साहबजादे सरहंद दी एनियां विच चुने गए ने, ते गुरु साहबां दा

जिथे वड़े साहबजादे शहीद हुए उथों तुरे माछीवाड़े आए माछीवाड़े तो चले कई जगह हुंदे साहब जी जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे संगता गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईया ओही रौनका फिर लग गईया पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं जदों गुरु साहिबां दे धर्म सपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं महाराज मेरे चारों साहिबजादे किथे ने तां गुरु साहिबां ने कहा सी तुहाडे चार पुत्र उन्हां सारिआं तों वार दित्ते ने जिहड़े जिउंदे ने जिन्हां हाली जिउणा है तुहाडे साहिबजादिआं ने सिखी दा महल होर पक्का कर दिता है अपना खून दे के समा बीतिया गुरु साहिब जी हुण कोट कपूरे पहुंचे साहिबां नूं पता लगा सरहिंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लै के पिछा करदा आ रहा है तां गुरु साहिबां ने कपूरे नूं कहा कपूरिया साढ़े पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लैके आ रहे है तू अपना किला दे तां कि इत्थे असी उहदे नाल दो हथ कर लईए कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है पर औखा समा देखिया तां इह वी मुंह फेर गया कहन लगा महाराज मुगलां दा राज मैनूं मुगलां कोलों डर लगदा है जे तुहानूं किला दित्ता ते मुगल मैनूं खत्म कर देणगे वजीर मैनूं खत्म कर देवेगा बादशाह मैनूं सजा देवेगा तां गुरु साहिबां ने कहा जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानूं लोड़ नहीं अज वी इहो जिहे लोक आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने सिखी छड्डदे ने अमृत तों दूर ने पर जिहड़े इंसान अपने धर्म च पक्के नहीं अपने गुरु दे उपदेश ते नहीं चलदे दुनिया दे सुखां अगे सिर झुकांदे ने सच जानना उन्हां दा जीवना कुछ एहो जिहा जीवना है जिवें साहिब जी कहिंदे ने जे जीवे पत लथी जाए

करेंगे कहां जो प्रभ काज ना अहे इहां। इस जीवन नु की करना है जे गुरु दी खुशी ना मिली। सिखी गुआ के जीवे ता क्या जीवे। सेवा करदे हां सिखी निभांदे हां मौत होवे ता जीवन सफल हो। ए गल भाई मान सिंह ने कही ता माई भागो हाथ विच सांग फड़ी इस वी लकीर टपी

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणंग शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नु भी कीड़िया दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणंग छत्र गाहे रणंग कहंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नु अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोउ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माही कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सो छाले उछाले म्यान विच तेग कढ़ी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह दा डंका बजाया वापस मुड़ गया हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है सैंकदा पे है सह टुटदे ने हुण भाई मान सिंह अरदास पिया करदा है।

मुंह बंद हो गया, अखां बंद हो गईयां, हाथां दा जुट खुल गया, भाई मां सिंह पूरा हो गया। ओ नैन मीटे गए से, जुट हाथ दा खुल पया से, ओ सिख पूरा हो गया, गुरु गोद प्यारा वसया, दरबार उज्जल मुखड़ा ले जाए सरूपे वसया। ते गुरु साहिबा ने भाई मान सिंह नु वार दिता, जाओ महान सिंह जै ममलोक, जा मां सिया मेरे देश जा, सदा बसो कब नै तै सोख,

खत्म नहीं हो गएगा। पैमा सिंह पूरा हो गया। आप कई बार कह देने कोई मरे कि फलाना पूरा हो गया, नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है? पूरा तो होया है भाई मां सिंह, जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगिया कीतिया, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जिउंदा है, जिन्हू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने, वो पूरा कदी नहीं होया जिहदा जीवन उच्चा है। किन्नी कृपा होई भाई मां सिंह, एक ओदा मरना जड़ा गुरु तू बेमुख होके मरदा है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा, एक मरना

से महाबली महायोधे सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हें दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया उन्हां नूं अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे रहत बैत विच रवे गुरु दे।

गोविंद राय जी कुछ वड्डे होए, चार पांच साल दे लगभग आप दी उम्र रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लैके ते गंगा दे किनारे खेलने जाउंदे सन। इस गंगा दे घाट ते शिव दत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी, रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवान भोग लाओ। और इस शिव दत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु, रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो, कि ते ऐसा ना होवे के तेरे दर्शन कीतियां बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। सात सिगत बोलो श्री। और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पवे, हे मेरे प्रभु एक वरा दर्शन कराओ। ता आज जदों अरदास कर रहे है इस दी अरदास, क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदों कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है ता उसकी अरदास प्रभु दे चरणों विच पहुंचदी। गोविंद राय जी खेडदे हुए आ गए ते पंडित शिव दत्त नु वेख्या के बेनती कर रहे है, प्रभु भोग लाओ, प्रसाद अगे रखिया, लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़िया। ताई गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिव दत्त ने देखिया के कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुक के मुंह विच पा ले, ता पंडित शिव दत्त नु बड़ा क्रोध आया, कहन लगा तू कौन है और मेरी पूजा विच विघ्न पा रहे है, जा चला जा इत्थों, ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघ्न नहीं पाउना। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे हुए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिव दत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती, भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलदे हुए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा ले। सात सगत बोलो श्री। आज पंडित शिव दत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते, अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिव दत्त। गोविंद राय जी दौड़दे हुए माता गुजरी दी गोद विच जा बैठे, कहन लगे मां जी आ पंडित सानू गुस्सा करदा। ताई पंडित शिव दत्त भी आ पहुंचिया, कहन लगा ए तुहाडा लाल है? हां मेरा लाल है। पंडित जी हुक्म करो की गल है? माता गुजरी ने पुछया, ता कहन लगे अज 2 दिन तो मेरी भगती विच विघ्न पा रहा, मैं प्रसाद रखदा हां भगवान राम जी दी मूर्ति अगे के प्रभु भोग लाओ ते ए थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लैंदा। ता गोविंद राय जी कहन लगे मां जी असी ता इहदी भगती विच कोई विघन नहीं पाउंदे, ए आप ही रोज कहिंदा भोग लाओ ते असी जदों प्रसाद चुके भोग लाया ते सानू गुस्से करदा। सात सगत बोलो श्री। ता पंडित शिव दत्त बड़े क्रोध विच कहन लगा मैं तेनू ता नहीं कहिंदा भोग लाओ, मैं ता अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी नू कहिंदा हां भोग लाओ, ते जे कल तू आया और मेरी भगती विच विघन पाया ता फिर मैं तेनू देख लवांगा। उसे नाल बोल के पंडित शिव दा चला गया। तीजे दिन मुड़ गंगा दे किनारे जदों आके भगती विच जुड़िया ते थाल प्रसाद दा अगे रखिया ते बेनती कीती कि हे भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर बच्चियां नाल खेडदे आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लिया। अज पंडित शिव दत्त ने गोविंद राय जी नूं बांह विचों पकड़ लिया, आख्या 2 दिन तो मेरी भगती विच विघन पा रहे हैं, आज आज नहीं छड़ना। कोल पई सी सोटी, सोटी चुके ज्यो गोविंद राय जी नू मारन वास्ते चुकी ता गोविंद राय जी ने चट अपना रूप भगवान श्री रामचंद्र जी दा बना लिया। सात सगत बोलो श्री। पंडित शिव दत्त वेख के हैरान रह गया, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हा दा मैं उपासक इस बालक विचों मैनू दर्शन

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां बुरियां।